दूसरे पादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दा है। गुरु साहब जी कहंदे ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिहा बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने कहंदे ने दोस्ती करनी है

के छड़ माड़ा पासा चल आपा कीर्तन सुनी किसे चंगे महापुरुष कोल बैठ के रब दी गल सुनी माड़े पासे तू जेड़ा मोड़े

इस जोगी ने टिंडोरा फिराया जेड़ा मेरे लंगर विचों प्रशादा छकेगा मैं उन्हूं 2 साल का स्वर्ग देवांगा।

जोग कहन लगा एक और फिर जाओ उसनु को मेरे लंगर विच आके प्रसादा छके मैं 10 साल का स्वर्ग देवांगा। जोगी दे चेले फिर पाए तिलकू दे घर गए बुआ खड़काया भाई तिलकू जी ने बुआ

मैं देखा फिर एक इन्नी शक्ति दा मालिक है जिड़ा मेरे आखे नहीं लगता जो कि आसन ला के बह गया रिधियां सिधियां प्राप्त सन उन रिधियां सिधियां दे सद

जोगी दे लंगर विच प्रसाद छक तेरा बचाओ हो जाएगा, नहीं तां तेनू असी जिंदा नहीं छड़ना। पर भाई तिलकू उन्हां दा मन गुरु नाल जुड़े है, ते जिहदा मन गुरु नाल जुड़िया होवे एहो जिहियां चीजां लागे नहीं आंदियां। ओ भूत प्रेत बथेरा रौला पांदे ने, भाई तिलकू बुआ खोल लंगर खा नहीं ते तेनू मार देंगे। हुण जिस गुरु दी ओट भाई तिलकू ने लई, ओ गुरु भाई तिलकू दी रखिया कर रहे है। उन्हां भूतां प्रेतां नूं कोई एहो जी चीज पैंदी है जिहड़ी चुक के पिछां सुट दिंदी।

दरवाजा खोल, जोगी आप तेरे द्वारे आया, पर हुन पाए दिल को नेबुआ नहीं खोल।

जोगी आप तेरे द्वारे चल के आया है, चल के लंगर छक। मैं तेनू सारी जिंदगी दा स्वर्ग दिया। भाई साहब ने बोला।

तेरे गुरु दा तेनु वास्ता बुआ दा खोल। गुरु दा वास्ता सुनिया भाई तुलकु जी उठे, उठ के बुआ खोले। गुरु दी गल ते गुरु दे प्यारे अपनिया जाना वार देंदे, गुरु दे चरणा तू कुर्बान हो जा।

पर एक गल दस, लोकी तो स्वर्ग वास्ते पुठे लटकते ने, जंगलों विच भजे फिरते ने, भुखे रहते ने, तीर्थां ते जांदे ने,

तेरा गुरु केड़ा जेदे चरना दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता, जिदे चरना दे नाल तू मन जोड़े है ते स्वर्ग नू ठुकरा दिता, उस गुरु दे मैनू भी दर्शन करा मैं भी दर्शन करा। केड़ा ऐसा गुरु है जिदे चरना नाल तू जुड़ के स्वर्ग दी परवाह नहीं करता। भाई तिलकू जी कहन लगे, मेरे गुरु मेरे नहीं उते सारियां दे सांझे ने, उन्हां दा नाम धन गुरु अर्जन साहिब।

तिस जोगी ने पाई दिल को दिनाल पाई, पाई दिल को गुरमुख है। जोगी ने भी तपस्या की थी पर मन रिधियां सिद्धियां विच लग गए। हुण पाई दिल को दिनाल दोस्ती की थी ते पाई दिल को रिधियां सिद्धियां दे रस्ते तू हटा के सच दे रस्ते वल लै तुरिया। इसे वास्ते सहबा ने कहा दोस्ती करनी उन्होंने।

जोगी कहन लगा दिल को, तू अपने गुरु की सिफत बड़ी की थी। बड़े गुण दसे ने अपने गुरु ने, पर एक गल दस, तेरे जिस गुरु विच इनिया सिफता इनिया वड़ियाईया ने।

गढ़ शंकर तो आ रही है, वो सारी की सारी जोगी समेत तिलकू समेत कनात के परले पास

अचानक तूफान आ गया। लोग सारे डर गए। मलाह कहन लगे बचन की कोई उम्मीद है, तूफान बड़ा भयानक है, बेड़ी भी डोलन लग पी। इस तरह लगता होन डूबी कि होन डूबी। मलाह कहन लगा जे कोई आदमी अपनी बलि देवे ताए तूफान बंद होवेगा। हुण सारे लोग एक दूसरे वल देखन लग पे कि केड़ा बलि दिंदे। मैं भगवे कपड़े पाए सन।

सब कुछ भूल गए यार, चरणा दे सिर रखे धन गुरु अर्जन साहब ने, जोगी ने उठाया जोगी वाल मेर की निगाह नाल देखिया, रिद्धियां सिद्धियां तो उत्ते करके गुरसिख बना दिता। भाई तिलकू वाल होए साहब जी, भाई तिलकू नू फड़ के अपने गल दे नाल ला लिया ते कहन लगे, भाई तिलकू तेरे वर्गे सिखां वास्ते ही ता बाणी कहंदी है, बिना गुरसिखां को हों वारिया जो बहंदे उठदे आ।

जिनू गुरु ने अपने गल दे नाल आया वड़ियाई दिती निहाल हो गया। जोगी भी हुण गुरु दे चरणा दे नाल जुड़ गया। सारा संग सारिया दर्शन कीते। कुछ दिन अमृतसर रह के भाई दिलकू ए जोगी इना सारिया लोकां दे नाल गुरु दी सिफत करदे होए वापस गढ़ शंकर नूं तुर पए। वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग पुरंग अनेक न जापन करतबा। ए अकाल पुरख तू बड़ा वड्डा है तेरे रंग कोई नहीं जान सकदा तेरा अंत कोई नहीं पा सकदा। भाई तिलकू दरिया सी गुरमुख सी जोगी ने दोस्ती की थी जोगी तर गया। इस वास्ते गुरु अंगद साहब कहंदे ने उन्हां दरियावां गुरमुखां भले पुरशां नाल दोस्ती करो जिन्हां दे दोस्ती दे नाल जिन्हां दे साथ दे नाल तुहाडे विच चंगे गुण आण तुहाडा जन्म सौर जा।

कोई रोज रोज नहीं मिल सकता। जो सेवा मिल गई है तो कर ही तभी तो मार्ग मक्ष गंगाराम रात दिन भांडे मांगी जाने ते गुरु के दर्शन की उड़ीक रात दिन उड़ीक कर जाए कदो भागा वाला दिन चल तन गुरु अमरदास पातशाह जी के दर्शन गुरु बख्शिश कर जिस तरह बख्शिश हो रही गंगाराम की सेवा थाए थे कहीं ने इशारा किया समा सुख की घड़ी का पता ही नहीं आप खुश रही दुख की एक घड़ी आ जाए कई चीज नहीं आ जाए पता ही नहीं लगता किस तरह समा यही है मान धन गुरु अमरदास पातशाह जी बख्शिश प्राप्त करने वास्ते आप सारे गुरु मार्ग ने मेहनत की थी तो आप जो सेवा मिल जाए गुरु का की करो कि इस उड़ीक आप शामा तक इंतजार करिए गंगाराम दे सदके सानू ही दीदार का किरका मिल जाए तो साडा कीर्तन कीता सुनिया पर गुरु घर किसी की कामना जाया नहीं खुश जिसने भी तन तन मन धन न जिसने भी सेवा की थी है हजूर फरमाते जान के सिमरन सब कुछ पाइए बिरथी उसी भी कामना कर अपनी कामना भी गंगाराम की कामना किस तरह गुरु ने सकते अमृत वे साढ़े पाई साढ़े जीवन का कीर्तन आशा जी अमृत वेला सच ना वड़े आई ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਓ ਕੱਲ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਸ पूर्णमासी ऐसी पूर्णमासी आई रब प्रगट हो गया खुश रही तई बाबा ने सिंह जी महाराज उसे चौबी घंटे का सत्संग है डेली कोई आए चाहेगा पर पूर्णमासी का समागम खास होंगे तार इंडिया में हो बाबा जी की बख्शिश द्वारा नानक सर हाजरी भरता ऐसी साई की प्रेरणा अनुसार पूर्णमासी थोड़े को जुड़े हुए हो थोड़े दर्शन करके मैं भी उस पवित्र पावन याद हिरदे चाहवाना सुरत नानक साहब पहुंचा के दर्शन करके और कल पूर्णमासी आप आओ गंगाराम जी साखी सुन के अपना जीवन सेवा करो आप जिस गुरु ने सानू ये दात बख्शी ओदा शुकराना अदा करिए यही अरदास करिए भले अमरदास तेरी तेरी रहमत है मेरे पातशाह की तासे कलयुगी जी थां थां ते कलयुग रुकावटां पे पाए माया कई रूप धार के पिछड़ी किथे आए अजे आ गए तो मार्ग दे दारू प्राप्त करके गुरु नु पा गए खुश गुरु नु पा गया सारे मिल के करी उस तो प्राप्ति कर धन गुरु नानक पातशाह आप जी ने धर्म करो सारे गुरसिख माई पाई धन गुरु राम दा अमरदास पातशाह जी आप जी का आगमन गुरुपुरब मना
ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ

राग कल्याण भुपाली दियां सुरावलियां विच सर्व दुखां नूं निवारण वाले पार ब्रह्म परमेश्वर प्रति इउं जाचना कर रहे ने।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुच्ची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलो भाई, खालक खलक खलक मह खालक पूर रहे हो सब ठाई।

विभास ते प्रभाती रागां दे सुमेल राग विभास प्रभाती दियां मधुर सुरावलियां विच भगत कबीर जी उपदेश दे रहे ने। प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा।

माता जी नू दित्ती। माता जी ने ए फुल साहिब कलगी धर पातशाह दे अगे भेंट कीते ता साहिब बहुत प्रसन्न होए कि कितनी सोहनी खुशबू आ रही है इन फुलां दे विच। ता माता जी ने केसरा सिंह नू आख्या कि तेरी सेवा ते साहिब बहुत प्रसन्न हन। ता केसरा सिंह ने आख्या माता जी ए सेवा मेरी नहीं, ए सेवा छोटे माली दी है जो बड़े प्यार नाल सेवा कर रहा है, श्रद्धा भावना नाल सेवा कर रहा है, नाल नाल बूटियां नू पानी लाउंदा है, नाल नाल उसके नेत्रों विचों जल वग रहा हुंदा। पर माता जी छोटा माली सेवा तो बड़ी करता है पर साहब उसनु दर्शन नहीं देंदे। ता माता जी हैरान हो गए की कारण है साहब उसनु दर्शन क्यों नहीं देंदे। केसरा सिंह ने बेनती की थी माता जी ए साहबा नु ही पता है क्यों नहीं दर्शन देंदे। ता माता जी ने साहबा नु बेनती की थी कि सोना ते मोहना बड़े प्यार नाल सेवा करदे हन पर आप दर्शन क्यों नहीं देंदे। ता साहब आखन लगे जीतो जी एक साई दा बंदा ए वाक इना लई कर गया है कि ठाकर दर्शन नहीं देवेगा। जीतो जी गुरु मारे ता सिख बख्शा लेंदे हन पर सिख मारे ता गुरु नहीं बख्शदे। जीतो जी मैं भगतां दे वस विच हां मेरी बांदी भगत छडावे बांदी भगत ना छूते मोहे। मेरी बदी होई ता मेरे भगत छडा सकदे हन पर भगतां दी बदी मैं नहीं छडा सकदा। जीतो जी सोना ते मोहना दोने मैनू प्यारे लगदे हन पर सिख दा बचन अटल तिन काल सत है गुरसिख बचन कर गया सी ठाकर दर्शन नहीं देगा। ता माता जी ने साहबा नु नमस्कार की थी बाग विच आ गए सोना ते मोहना नु दिलासा दिता के धीरज करो साहब कृपा करनगे

तत्पर सेवा विच जुड़े रहो, मालिक आपे कृपा करनगे, बख्शिश करनगे। जे तुहाडी आस है साहबां दे दर्शन करन वास्ते तां साहब जरूर दर्शन देण। सेवा करदिआं कुछ दिन लगे, साहबां दा अवतार पुरब नजदीक आ गया, तां सोहना ते मोहना मन विच आस पैदा हो गई कि साहबां दा पुरब नजदीक आ रहा है, फुल तैयार करी पुरब ते फुल भेटा करांगे। ए दोनों जने की आस लाई बैठे हैं, श्रद्धा ते भावना नाल फुल भी तैयार कर रहे हैं, ते नाल नाल विराग विच ए शब्द गायन कर रहे हैं। मन विराग भया दर्शन देखने का चाहो।

ये पावन पवित्र शब्द आसा महला पहला धन गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया, जिस शब्द अंदर सतगुरु सानू उपदेश देते हुए एक गल समझा रहे ने। कहते ने हे मनुख हे इंसान, जोत वेख जात ना पुछ, क्योंकि साडा संबंध जोत नाल है, जात नाल नहीं। जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे, जुड़ना ते किते रहे है, असी टुट जावांगे। क्योंकि जात तोड़दी है जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे, जुड़ना ते किते रहे है, असी टुट जावांगे। क्योंकि जात तोड़दी है जोत जोड़दी है, दोनों गल्लां दा ख्याल रखना। जोत पुछण करके निकटता आउंदी है, जात पुछण करके मनुख मनुख तो दूर हो जाता है। हुण ये बचन सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने आख्या नहीं करके दिखाया, जानो जोत ना पूछो जाती, जोत वेख पाई जात ना पूछ। क्योंकि जात ने हमेशा तोड़िया जोड़िया नहीं, ते जड़ी जोत है वो एक कर देती। हुण सतगुरु उपदेश देंदे हुए समझा रहे ने कुछ गल्लां, आपदी चोली पावां।

गल राम दे नां दी है पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला रहा। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहिंदे ने

एक शैतारी प्रेमी तख्त पोछते बैठे, हाथ उज माला पड़ी रह राज का पाठ पिया कर दे। इसका लड़का बाहरों भटकदा भटकदा आया, अपने पिता नू पाठ करदा देखिया तां कोल बैठ गया। पिता ने पाठ किया, पुत्र ने सुनिया, अरदास की, पुत्र ने भी सुनी। अरदास तो बाद ए लड़का पुछदा है, पिता जी ए जो तुसी पढ़ रहे सी मैनू सुन के बड़ा आनंद आया, पर ए किस दी कलाम तुसी पढ़दे सी? इस तरह लगदा है जिवें पहला कदी इस लड़के ने पाठ नहीं सुनिया। वैष्णव साधुआं दे कोल ए बहुता जाया करदा सी। पिता कहन लगा, बेटा ए कलाम नहीं, ए धन गुरु नानक साहब दी बाणी। ए सुन के लड़का कहन लगा, पिता जी मैं ते एवें बाहर भटकदा रहा, मन नूं शांति नहीं मिली, अज ए बाणी सुनी मन टिक गया। जिस गुरु दी बाणी विच इन्ना आनंद है, जे कदी उस गुरु दे दर्शन हो जान ता पता नहीं किन्ना क आनंद प्राप्त होवेगा। पिता जी ओ गुरु किथे? मेरा चित करदा है कि मैं उस गुरु दे दर्शन करा। पिता खुश होया कि मेरे पुत्र दा ध्यान गुरु वाल आया। कहन लगे, बेटा धन गुरु नानक साहब तां ऐस वक्त नहीं हैगे, हैगे तां हर वेले ने, हर जगह ने, पर संसारी तौर ते ऐस वक्त उन्हां दा पंज भूतक शरीर इस मातलोक विच नहीं। ए सुन के लड़का कुछ उदास होया, कहन लगा, पिता जी मैं फिर अभागा रह गया, मैं गुरु दे दर्शन नहीं कर सकता। पिता ने कहा, नहीं बेटा, गुरु दा सिख कदी अभागा नहीं होया। गुरु नानक साहब दी जगह उन्हां दी दसवीं जोत श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंजाब दे विच आनंदपुर साहब जोतां जगा रहे ने। जे तू दर्शन करने ने ता धर्मशाला विच सांगे इकट्ठा हो रहे है। जिन्हां ने परसों आनंदपुर साहब जाना है तू भी नाल चलिया जाई। सफर लम्मा होवे नाल संग होवे ता गल्लां बातां करदे आ सफर मालूम नहीं हुंदा, तू संगत दे नाल चला जा। होर खुशी कि संग भी इन्हां दिनां विच जा रहे है, जाण दी तैयारी कीती। पिता बड़ा खुश है कि मेरा पुत्र अज गुरु दे दर्शन करन आनंदपुर साहब जा रहे है। तैयारी हो गई, 100 रुपया पिता ने दिता कि बेटा मेरे वालों गुरु दे चरणा ते रख के मथा टेकी, आठी पातशाही हथां दी मैल है, इस नूं सफला करो। 500 रुपया इस लड़के ने अपने वालों भेटा धरन वास्ते जेब च पा लिया, समान लिया, धर्मशाला जा पहुंचिया। संगत सारी जुड़ी है, जान तो पहला सारी संगत ने अरदास की,
सारे अरदास कीती है कलगीधर पातशाह आप दे दर्शना वास्ते असी सारे इस उजैन शहर तो तुरन लगे हैं। कृपा करनी साड़ी यात्रा सुखां दे नाल संपूर्ण होवे, आप दे दर्शन प्राप्त हो, अरदास करके शब्द पढ़ दे ए सारे लोग ए सारी संगत।

दूसरे पास से धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज शिकार खेड़ के आए सन। नाल सिखा ने किन्ने ही मग मार मार के उन्हां दियां लत्तां फड़ियां ने ते टौणा लटकियां ने। ओ मग हथां विच फड़ी होई ने। संगत ने गुरु साहब नू देखिया, गुरु साहब ने संगत नू। गुरु साहब जी भी खड़े हो गए, संगत भी किले दे बाहर ही खड़ी हो गई। सारी संगत ने मत्था टेकिया, पर ए जिहड़ा सहजतारी प्रेमी सी एदे मन विच गुरु साहिबां वास्ते किरणा पैदा हो गई। ए तां सोच के आया सी कि गुरु दी समाधि लगी होवेगी, गुरु साहिब चौंकड़ी मार के बैठे होणगे। पर जदू देखिया कि गुरु साहिब जी तां शिकार खेड़ के आए ने, नाल सिखां ने मरे होए मग फड़े ने हथां दे विच, तां इहदा मन किरणा दे नाल भर गया। भाई संतोख सिंह जी

उस कर्मा दी खेड दा सदका ही जीव जेड़े ने जूना विच भटकदे ने ते गुरु कृपा करके उन्ना दा जन्म मरण दा गेड़ जिहड़ा है वो कट देंदा। सारी संगत किले विच दाखल हुई।

चमकौर बाजार विचों ही लंघ रहे हैं पर बड़ा उदास। एक गुरु दा सिख ध्यान सिंह माजरिया बाजार विच खलोता सी, इसनु बाहों फड़ के घर लै गया, जल पानी नाल सेवा की थी। ध्यान सिंह कहन लगा, भाई लगदा आया गुरु की नगरी तो पर उदास बड़े। गुरु दे घरों जिहड़ा भी आंदा है उहदा चेहरा खिड़िया हुंदा है, पर तू उदास है, की गल? कहन लगा, सिखा की दसा, उजैन तू गया, तीन महीने सेवा की थी, 600 रुपया रख के गुरु नु मथा टेकिया, टेके आ कुछ बख्शिश करो, एकड़ा दिता है जेड़ा मेरा पिता घर रोज बनांदे, एक लोहे दा कड़ा ते बचन दिता है, कहंदे सी जो मंगेगा मिलेगा, पर सिखा तू दस, जिस कड़े दी कीमत अपनी चार आने नहीं उन्हें मैनू की देना। ये गल सुन के ध्यान सिंह उथों उठे, घरवाली को आ गए। ध्यान सिंह घरवाली नु कहन लगा, भलीए लोके, एक मूर्ख सिख आया, उन्हों की पता कि गुरु का वचन की हुंदा है? जे तू मेरे नाल सहमत होवे, माया दा लालची 600 ते 5 रुपये वध दे के गुरु दा बचन ते कड़ा असी उहदे कोल लै ली। घरवाली ने कहा, स्वामी जी बाजार जाइए, 1 रुपए दी 1 मण कणक आंदी, उस कणक नूं घर लिया के साफ करन लगे आ, एक दाणा चुकीए दूसरे पासे रखिए ते आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु, फिर एक दाणा चुकीए फिर आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु। एक मन कणक विच जिन्ने दाने ने सारिया ते वाहिगुरु वाहिगुरु कह के वह कणक साफ करिए, उस कणक नूं फिर बाजार लै जाइए वेचण वास्ते, तां बाणिए ने उहदा मुल 1 रुपया ही पाणा, पर जे वह कणक जिदे ते सिमरन करके साफ कीती गई है वह कणक गुरु घर लै जाइए ते गुरु नानक तुठ के अपने सेवक नूं अपनी जगह दे दिंदा है, इन्ना गुरु दयाल हो जांदा है। गहने ला दिते, गहने वेच के इन्नू पैसे दिओ, इन्नू की पता कि गुरु का वचन की हुंदा है? 605 रुपया जेब विच पा के ध्यान सिंह माजरिया फिर उस लड़के दे कोल

फिर आया पिता को, पिताजी मैनू गुरुकुल बख्शवा दियो। पिता इन्हां दी माता ते ए लड़का चमकौर सौ पहुंची, ध्यान सिंह नू नाल लैके के तू गुरुकुल सानू बख्शवा दे आनंदपुर साहब जा पहुंचे। तीन दिन सेवा कीती, चौथे दिन इस लड़के दा पिता गुरु साहिबां दे कोल पहुंचिया, बेनती कीती कि खिमा करो मेरा लड़का भुल गया, उन्हें आप दा बचन वेचिया। साहब जी कहन लगे, बिशंबरदास घबरा ना, तेरा ते साडा बड़ा पुराना संबंध है। गुरु नानक साहब उजैन गए सन ता तुहाडे वडके नानू ने कहा सी फिर कदू दर्शन दियोगे, ता गुरु नानक साहब ने कहा सी दसवें जामे विच मिलांगे। तो दसवें जामे विच असी आए हां, तुहाडा साडा मेल होना सी होया है, कल दीवान तो बाद आयो, जो मंगोगे तुहानू मिलेगा। अगले दिन सारे जने इकट्ठे होए, साहब जी कहन लगे, ध्यान सिंह तू गुरु दा बचन लिया, तेनू कुछ मिले है? ध्यान सिंह ने हाथ जोड़ ले, कहन लगा, पातशाह जो मेनू मिले है मैं दस नहीं सकता, गुरु अर्जन साहब दा शब्द है, पढ़ के सुनाना, इन्ना कुछ मेनू मिल गया है। ता शब्द पढ़िया, गुरु के बचन मोहि परम गत पाई। ए शब्द आप सुन चुके हो कि गुरु दे बचन द्वारा की प्राप्त होंदा है। माया भी मिली, हलवान गया, मोरां दा भांडा लभा, जमीन भी लै ली, मकान भी बना ले, सब कुछ मिल गया। ते जदों इस लड़के हरगोपाल दास ने सुनिया कि गुरु दे बचन विच ता बहुत कुछ है, ता रोण लग पिया। ता गुरु साहब ने कहा, भाई रोवो ना, घर जाओगे, घर जाके बस्तर छाद के पांच सिखां नू घर बुला के प्रसाद छकायो, कड़ा प्रसादी देख तैयार करियो, आनंद साहब दा पाठ करियो, जो मंगोगे उस वक्त अरदास विच ओह तुहानू प्राप्त होवेगा। गुरु दी वड्याई करदे वापस उजैन पहुंचे, जो मंगया वो गुरु ने फिर बख्शिश कीता, सारे दुख दूर हो गए, सुख जड़े सन उन्हां नाल फिर घर भर गया। ते गुरु साहब जी का शब्द है, भाई गुरु का वचन की है, जो आपा गुरु की बाणी पढ़ते हैं, गुरु के बचन नूं मन्नांगे, गुरु के बचन की कमाई करांगे, तां साडा जीवन सुखां दे नाल भर जावेगा। जे गुरु दे बचन दी सार नहीं लवांगे ते फिर भाई दुखी होवांगे।

पोखत है जल में फल में पल में कल के कर्म विचारे के निर्जुर्ण रूप हो फरीदा खालक खलकू में।